और इस सुहाने सफर में मैं रहूंगा आपके साथ विद योर ओन शो मुसाफिर हूँ यारो, अ प्रोग्राम फॉर ऑल दोज लवली पीपल हु आर अवे फ्रॉम देयर होम्स। लेट्स टॉक अबाउट यू एंड योर फेवरेट म्यूजिक विद योर होस्ट जिमी, एवरी वेंसडे 7 PM ऑन फ्री FM 89.0।

0: He aha te wā, ko te paupautanga o te rā. It's midday.
1: और इस सुहाने सफर में मैं रहूंगा आपके साथ विद योर ओन शो मुसाफिर हूँ यारो अ प्रोग्राम फॉर ऑल दोज लवली पीपल हु आर अवे फ्रॉम देयर होम्स लेट्स टॉक अबाउट यू एंड योर फेवरेट म्यूजिक विद योर होस्ट जिमी एवरी वेंसडे 7 PM ऑन फ्री FM 89.0
2: Free FM 89.0, proudly supported by New Zealand On Air.